भगवान प्रभु मलाई अरबपति बनाऊ, खरबपति बनाऊ प्रभु, मलाई चन्द्रै चन्द्र दिला प्रभु, मेरो कोही छैन भगवान। कस्तो नबुझाए जस्तो गरे भगवान, है तेरी कस्तो दुःख दिनु सके प्रभु तिमीले।